याला घर वया फसल वया नुकसान थी वया पर मुंजा मौला महबूब ज मिलाद जी नेमत नखस जा जैसी ताई जिंदगी आ मिलाद मलाइंदा से।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मका गडियल दिफाई मुआदे की आजियां कर छी। डोनाल्ड ट्रंप है खेस यो डी खुशी थी रही है पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया पारा दिफाई मुआदे से सही क्यों। दिफाई मुआदो जाहिर करे तो विच ओभर मुतहद थी रो मुल्क असरायती नमूने पांजो दिफा करण के काबिल हूंदा। पाकिस्तान तुर्किया ए सऊदी अरब पारा 7 अगस्त से मका दिफाई मुआदे से सही क्यों जै तहत कें एक मुल्क से हमलो टिन्हीं मुल्क से हमलो समझो वो। इस्लामाबाद ए रावलपिंडी में बरसात तबाही मचाए छी। पेर वधाई वो इलाको पानी हेठ अची वो। बुडल कुटुंबन पारा हुकूमत के मदद की अपील। रेस्क्यू टीम पानी में एक घर में फाथल चयन मान के बचाए वरतो। रेबन रेन एमरजेंसी लागू। नाला लय में पानी में चार सबब खतरे जा सायरन वजाया हुआ। एमडी वासा अजीजुल्ला खान नाला लय में ग्वाल मंडी वट पानी की सतह 17 फुट ए किटारिया वट 20 फुट ते पहुंची वही है। शहरन के हेठन वाले इलाक नाला लय का परे रहने फौरी तौर से इलाको खाली करने की हिदायतू जारी कई वही।

सिंध संभली जे तक पीएसटी गंबट सोबोदर में थियल नंढी चूंड में पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार बैरिस्टर अस्पंद यार खरल 48,869 वोट खणी वॾी अक्सरियत सां खटी वियो। आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसवर महदी सिर्फ़ 1299 वोट खणी सघियो। तक जे समूरन 164 पोलिंग स्टेशन मां मिलियल नतीजनि मूजिबि अस्पंद यार खरल वाज़े अक्सरियत सां कामयाबी माणी 48,986 वोट खणी कामयाबी माणे वरिती। सैयद तसवर महदी हुसैन शाह 1299 वोट खणी ॿिए नंबर ते, जॾहिं त मोहम्मद मूसा बोडो 702 वोट खणी टे नंबर ते। आज़ाद उम्मीदवार ग़ुलाम अली हुजण बि सिर्फ़ 408 वोट खणी सघियो। नतीजा मुकमल थियण बाद रिटर्निंग आफ़िसर फार्म 47 जारी करे छॾियो। चूंडनि दौरान वोटनि जो टर्न आउट 20.53% रहियो। 2,54,980 रजिस्टर वोटर्स मां सिर्फ़ 52,325 वोटर्स

इमरान टोले अवाम के मुसीबत के वर चाड़े छो है रुगो तेल जा अघ ही ना वधाइन पर टैक्सिस भी वधाए छन था पेट्रोलियम शयन जा अघ वधण से हर शय महांगी थी वेंदी है कराची के रेड जोन में धरणो गवर्नर हाउस डां ईंदड़ वेंदड़ रस्ता कंटेनर लगाए बंद कया वया हाफिज मनम जफर चाहिए त नाजायज टैक्सिस जरिए अवाम के खीसन से धाड़ो हयो पे वे गैस बिजली पेट्रोल शयन के अघन में घटताई करनी पवी पेशावर में गवर्नर हाउस अगया धरने में कारकुनन की वही अक्सरियत में शिरकत लियाकत बलोच फारम 47 बुनियाद से मरियल हुकूमत महांगे जो कारण है 26-27 आइन तरमीम ए आइन जो होलियो बिगाड़ो वो है सजे मुल्क में काफिला इस्लामाबाद तरफ रवाना थन्दा कोटिया में भी जमायत इस्लामी के कारकुनन जो गवर्नर हाउस अगया धरणों

0: हुकूमत सां ॻाल्हियुनि खां पोइ गुड ट्रांसपोर्ट मुल्क गिर हड़ताल 40 ॾींहनि लाइ मुलतवी करे छॾी। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जे सदर मलक शहज़ाद ऐवान चयो आहे त 9 ॾींहनि खां हड़ताल जारी हुई, पर मुल्क साम्हूं मलक जो को बि मुक़दमो न आयो। मुल्क जे वसी मफ़ाद में हड़ताल 40 ॾींहनि लाइ मुलतवी करे रहिया आहियूं। डिसंबर में बि ख़ातिरियूं ऐं वाइदा कया विया पर पूरा न थी सघिया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमीअ चवण आहे त वज़ीर आज़म मुल्क जे बहितरी लाइ ॾींहुं राति कमु करे रहियो आहे। खिते में अमन लाइ तारीख़ी दिफ़ाई मुआदो मके में थियो। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर बि बहितरीन किरदारु अदा कयो आहे। हुकूमत कोशिशि करे रही आहे त अवाम खे रिलीफ फराहम कयो वञे। ट्रांसपोर्टर्स खे अदब सां चऊं था त हड़ताल ख़तमु करे ॻाल्हियूं कयो। हड़ताल मसइले जो हल न आहे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटीअ जे वफ़ाकी वज़ीर अहसन इक़बाल जो बयानु। अहसन इक़बाल चयो त पाकिस्तान में हिन वक़्तु वॾो चैलेंज एक्सपोर्ट में वाधि आहे। एक्सपोर्ट में खलल विझंदड़ मुल्क जे मफ़ाद में न आहिनि। ट्रांसपोर्टरनि जा मुतालबा दुरुस्त हुजनि या ग़लति, एहतजाज जो अहिड़ो रस्तो इख़्तियार न कयो वञे जंहिंसां मुल्की एक्सपोर्ट मुतासिर थिए।
1: और अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध लाए थे, जिसको बतरू का सिंध कहा जाता है। जनाब, सिंध की जमीनों का 60% हिंदुओं का था, जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है वहां। तो वो बतरू का सिंध, वो 60% जमीनें हिजरत करने वालों की थी।
2: आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीकेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। तो नाराज हमसे ना हो लोग, नाराज मुझसे हो जो ये जो अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराज नहीं जाएगी।
3: पाकिस्तान की बकार सालमी है। अब पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स के क्याम के बगैर नामुमकिन है।
0: मुल्क बचाइण जो वाहिद तरीक़ो इंतिज़ामी यूनिट्स ठाहिण आहे। नवां सूबा ठाहिण गद्दारी आहे त इहा ॻाल्हि आइन मां ख़तमु छो न कई वई? नवनि सूबनि जे मुतालबे लाइ MQM अॻवाणनि जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी चयो त नवां सूबा मुतालबो न पर वक़्त जी घुर्ज आहिनि। असांजी सूबनि वारी तजवीज़ मां पूरे मुल्क मां आवाज़ उथी रहियो आहे। सिंध मां लॾे वियल हिंदुनि जूं 60% ज़मीनूं असांजूं आहिनि। सिंधियुनि जी महिरबानीअ जो ॾींहुं बि मल्हाईंदासीं। फारूक सत्तार चयो त मुल्क जी सलामती नवां इंतिज़ामी यूनिट्स ठाहिण में आहिनि। मुस्तफ़ा कमाल चयो त पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वेट कयो आहे। इंतिज़ामी यूनिट सां सिंध जा हारी बि आज़ादु थींदा। सिंध जे माण्हुनि जी हालत बदतरीन आहे। बैराड़ीअ में जिते कुता पाणी पीअनि था, औरतूं उतां पाणी भरण ते मजबूर आहिनि। मुतहदा जे नाम निहाद क़यादत सूबे न पर कराचीअ जे अवाम वापारी अमुन ऐं खुशहाल खे यर्गमाल बणाइण जी ॻाल्हि पई करे। सूबाई वज़ीर सैद नासिर हुसैन शाह चयो त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मां वाज़ आहे त हू सख़्तु ज़हनी दबाउ जो शिकार आहे, जंहिंजो इलाज रुगो सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ार वटि आहे। इहा फ़्रस्ट्रेशन MQM वारनि जी सियासी अकिलाइप ऐं सियासी बेवसीअ जी अकासी करे थी। सईद गनीअ जो चवणु आहे त सिंध जो आम तौरी सियासी पार्टियूं मुतफ़िक़ आहिनि त सिंध में को बि नओं सूबो न ठहणु घुरिजे। हिक ॿिए ते गोलियूं वसाईंदड़ अॼु सिंध जे अवाम खे विरिहाइण जी साज़िश पिया कनि।

एसयूपी बरतानिया पारां सैयद ज़ैन शाह जे मान में आज ॼाणियो सिंध जे पाणी वसीलनि ऐं वहद ते तफ़ज़ुला जिदोजहद जारी रखण जो अज़म। सैयद ज़ैन शाह चयो आहे त सिंध हिन वक़्तु पंहिंजे तारीख़ जे इंतिहाई अहम ऐं नाज़ुक दौर मां गुज़री रही आहे। हिकु तरफ़ सिंध जे पाणी वसीलनि ते वार पिया थियनि त ॿिए पासे सिंध जे कुदरती वसीलनि ज़मीननि ऐं इख़्तियारनि ते बि कब्ज़ो कयो पियो वञे। सिंधूअ जे पाणीअ खे सिंध जे मफ़ादनि ख़िलाफ़ कंहिं बि मनसूबे लाइ इस्तेमालु करणु सिंध सां सरासर नाइंसाफ़ी आहे। कश्मीर में पीपल्स पार्टी अॻवान सरदार आलमगीर कोश जे क़तल वाक़े जो पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी फरियाल टालपुर नोटिस वरितो। आईजी सिंध ऐं आईजी पंजाब पारां क़तल जी मज़ामत जी जांच लाइ टे रुकनी टीम जोड़ी वई। टे SSP टीम जो हिसो हूंदा SSP रहीम यार खान इरफान समो, SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद गांगरो ऐं SSP घोटकी अनवर खेतरान शामिलु।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गरियल दिफाई मुआदे की आजियां कर छी। डोनाल्ड ट्रंप खेसि यो ऐसी खुशी थी है पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया पारा दिफाई मुआदे से सयू क्यों। दिफाई मुआदो जाहिर करे तो विचोभर मुतहद थी रो है उ मुल्क सराहते नमूने पेंो दिफा करण के काबिल हूँ। पाकिस्तान तुर्किया सऊदी अरब पारा 7 अगस्त से मके दिफाई मुआदे से सयू क्यों व्यू जैं तहत कें एक मुल्क हमलो टिन्हीं मुल्क हमलो समझो वो।

0: सिंध असेंबली जे तक पीएसटी गंबट सोबोदेरो में थियल नंढी चूंड में पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार बैरिस्टर रसवंत जारखरल 48,869 वोट खणी वॾी अक्सरियत सां खटे वियो। आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसवुर मेहंदी सिर्फ़ 1299 वोट खणी सघियो। तक जे समूरनि 164 पोलिंग स्टेशन मां मिलियल नतीजनि मूजिबि असवंत जार वाज़े अक्सरियत सां कामयाबी माणी ऐं 48,986 वोट हासिल कया। सैयद तसवुर मेहंदी हसन शाह 1299 वोट खणी ॿिए नंबर ते ऐं मोहम्मद मूसा बुलडो 702 वोट खणी टे नंबर ते रहियो। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम अली हुजण बे सिर्फ़ 408 वोट खणी सघियो। नतीजा मुकमिल थियण बाद रिटर्निंग ऑफिसर फारम 47 जारी करे छॾियो। चूंडनि दौरान वोटनि जो टर्न आउट 20.53% रहियो। 2,54,980 रजिस्टर्ड वोटर्स मां सिर्फ़ 52,350 वोटर्स वटि जो वोट जो आइनी हक़ इस्तेमालु कयो।
1: और अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध लाए थे, जिसको बतरू का सिंध कहा जाता है। जनाब, सिंध की जमीनों का 60% हिंदुओं का था, जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है वहां। वो मतरू का सिंध, वो 60% जमीनें हिजरत करने वालों की थी।
2: आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीकेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। तो नाराज हमसे ना हो लोग, नाराज मुझसे हो, जो ये जो अगर अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराजगी जाहिर करें।
3: पाकिस्तान की बकाया अब पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स के क्याम के बगैर नामुमकिन है।
0: मुल्क बचाइण जो वाहिद तरीक़ो इंतिज़ामी यूनिट्स ठाहिणु आहे। नवां सूबा ठाहिण गद्दारी आहे त इहा ॻाल्हि आइन मां ख़तमु छो न कई वई। नवनि सूबनि जे मुतालबे लाइ MQM अॻवाणनि जे गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ालिद मक़बूल को सदीकी चयो त नवां सूबा मुतालबो न पर वक़्त जी घुर्ज आहिनि। असांजे सूबनि वारी तजवीज़ मां पूरे मुल्क मां आवाज़ उथी रहियो आहे। सिंध मां लॾे वियल हिंदुनि जूं 60% ज़मीनूं असांजूं आहिनि। सिंधियुनि जी महिरबानी जो ॾींहुं बि मल्हाईंदासीं। फारूक सत्तार चयो त मुल्क जी सलामती नवां इंतिज़ामी यूनिट ठाहिण में। मुस्तफ़ा कमाल चयो त पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वेटो क्यू इंतिज़ामी यूनिट सां सिंध जा हारी बि आज़ाद थींदा। सिंध जे माण्हुनि जी हालत बदतर ई नाहे। बहराड़ी में जिते कुता पाणी पीअनि था, औरतूं उतां पाणी भरण ते मजबूर आहिनि।

0: ऐं खोड़ा भरसाण ॼातल शख़्स जो लाश हथ ॻोठ कूड़ो खां नबड़ो भरसाण लाड़काणो बाईपास वटां हिकु लाश हथ आयो आहे। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी।
2: साइमन जो लामा पैदावार वधाए फसल चमकाए मुनफरिद फार्मूलो सरायत पजी

0: અસર, સુંઢીને જલાય મોત જો પરવાનો, સારંજી વધાય પેદાવાર, મુનાફો મિલે શાનદાર, સુંઢીઓ ડરી વણ્યો લામા અચી વ્યો, સાહેબાન ઝરઈ મરકઝંતે દસ્તિયાબ.
1: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनक ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान वधाए.
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

इश्क है रंग रचे दा इश्क समुंड दिया छोलिया समझी अत इश्क आड़ाख बले सूली ते मनसूर चढ़ा कर अते अंगल हक अलें

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर

0: जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: आज शाम मुखे वरी याद आए मुझा सोना।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

ये वेरी बैड. Why? चलो मैं आपको सुनाती हूँ एक अच्छा सा गाना जो कि मैं सुनाने जा रही हूँ. एंड दिस सॉन्ग इज बाय बिलाल सईद एंड मेहर ताहिर. सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

आगे साथ साथ आज का जो टंग ट्विस्टर है वो आपसे शेयर करती जाती हूँ। आज का टंग ट्विस्टर ये है कि बबलू ने पूरे बादाम बड़ी बोरी में भर कर बंद बॉक्स में बंद किए, ठीक है। बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भर कर बंद बॉक्स में बंद किए, ठीक है जी। तो आज का टंग ट्विस्टर है बेसे, ठीक है। तो ये टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे, और जब जो बंदा ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर बोलेगा वो विन करेगा हमारे इस सेगमेंट को। सो आप जरूर देखें, आप प्रैक्टिस करें एंड देन कॉल पे आए और फिर टंग ट्विस्टर बोलिए, ठीक है। हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलो बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई
3: वाह है वो मुलायम राय के नमूने में दिफाई वाहदो जाहिर करे तो विचो भर बुता थी रहे वाह है वो मुल्क राय के नमूने में दिफाई करने के काबिल हुदा है पाकिस्तान तुर्की है सऊदी अरब पारा 17 अगस्त के मके दिफाई वादे ते सही कयो गयो जह तहत के एक मुल्क ते हमलो तिनी मुल्कन ते हमलो समझो विंदो अमेरिकी सदर जी मके दिफाई माहदे जी हिमायत ते वजीर आजम पारा ट्रंप जी वाखान वजीर आजम शाह अमेरिकी सदर जी मके दिफाई माहदे जी हिमायत ते वजीर आजम पारा ट्रंप जी वाखान वजीर आजम शाहबाज शरीफ ते वाहे मके गरे दिफाई माहदे ते अमेरिकी सदर जी लफ्ज जी बणाण में वाखान गया तो सऊदी अरब तुर्की असा गज जी पाकिस्तान पेंजो है कि दिफाई यकीनी बणाण में किरदार अदा कंदो रहंदो नवाब लखन एशिया में इतनी तबाही जो खतरो इकरार ते ट्रंप के भेटा पेश कया तो अमो नवाब जी रोशन मुस्तकबिल जरूरी ए बुनियादी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान खिलाफ कार्रवाई जारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान खिलाफ कार्रवाई जारी वडी के दहशतगर्द मारजी वया सिक्योरिटी जरिए मौजूद बलोचिस्तान के इलाके मारजी में जायक में कुछ इतला थे ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द मारजी वया थे जख्मी किया मारजी वया एक दहशतगर्द की सुजाणप मुश्ताक अहमद गम है यार के नाले से है सामान दहशतगर्दन के कब्जे में मैगजीन दस्ती बम आईएडी ठाण जो सामान पिण हथ किया वो है

अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फ़ौजी मशक़ूं महदूद करण जो ऐलान अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फ़ौजी मशक़ूं महदूद करण जो ऐलान अमेरिकी सदर चयो त सुठनि लाॻापनि सां कोरिया सां मशक़ुनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशक़ूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी। पार्लियामेंट अॻवाणनि जो

0: सभी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटी ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाए शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो क़तल केस जे जवाबदारनि जी बरियत ख़िलाफ़ अपीलनि ते अदालत वकील खां पुछो त फरियादी जे मौत खां पोइ संदसि भाउ अपील दाख़िल करे सघे थो वकील चयो त अहिड़ो सवाल नक़ीबुल क़त्ल केस में कयो वियो हो बेवा जे बदिरां भाउ पारां केस जी पैरवी करण जो जवाज़ न आहे अदालत ॿुधणी 6 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी मटियारी वेझो ज़मीन जे तकरार सां ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो फायरिंग हिकु ॼणो क़तल थियण जा इतला मटियारी वेझो ज़मीन जे तकरार सां ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो फायरिंग हिकु ॼणो क़तल थियण जा इतला में जहिड़ो थी पियो शहादुर थाणे जी हद के जहिड़ो थी पियो जहिड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में हिकु ॼणो क़तल थियण जा इतला लाश इस्पताल मुंतकिल कयो वियो ऐं थोरा भरिसां हिकु अणॼातल शख़्स जो लाश हथायो आहे
1: सोलर ऐं बैटरी
2: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन खे अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन खे बणाए रेडियंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
4: तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़ जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी
5: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में
4: सखर शिकारपुर रोड ते
5: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
5: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो
4: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर
5: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा
4: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइ कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़
5: हिते तव्हांखे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं
4: साफ़ मिठो पाणी
5: बिजली गैस
4: 24 कलाक सिक्योरिटी
5: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि हीउ मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
4: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो
5: अॼु पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
4: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री
5: कॉन्टेक्ट
4: 03009317252
5: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
4: Tawaje mehfooz mustaqbal and behtareen investment jo behtareen intikhab
6: Amade pehle shahar Sakhar ai Rohri mein
7: Jinnah Hospital Karachi jo tarbiyati afta
6: ai TB Hospital Kharpur jo mashhoor
7: Allergy dam TB phephdan ai chhati je mukhtalif bimariyon jo mahir
6: Dr Mohammad Nasir Sumro
7: Chest specialist pulmonologist
6: Mahir Amraz
7: phephdan mein पिपड़न में पानी ऐं पिपड़न में हवा भरिजण
6: टीबी नमूनिया ऐं ॿारनि में छाती जी बीमारी
7: मोटापे जे करे निंड ऐं साह में तकलीफ़
6: सहको दमो सिगरेट नोशी खां निजात
7: बार बार नज़लूं ज़ुकाम पुराणी खंघ
6: ऐं बलगम में रतु अचणु वग़ैरह
7: क्लिनिक टाइमिंग्स हर छंछरु खां अरबा ताईं शाम 4 खां 7 वॻे ताईं डॉक्टर शाहिद मीनाणी हॉस्पिटल तीर चौक बैराज रोड सखर हेरा हस्पताल जे वेझो
6: हर ख़मीस ऐं आचर ते
7: इंडस हस्पताल घोटकी में
6: हिकु खां शाम 6 वॻे ताईं
7: हिन खां अलावा रोज़ानो सुबुह जो 9 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं
6: तालका हस्पताल रोड़ीअ में मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कंदा
7: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
6: राब्ते जे लाइ
7: 03-11-290-2781 छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलियत

0: स्कॉलरशिप्स मौजूद। बिन सालन के कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जने तो डीपीडी प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस। आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 7,000 रुपया। हिते तो आके मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, ओपीडी जी बेहतरीन सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा है। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता है। याद रखो, सीट्स महदूद हैं। तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अगली दाखिला वो। एक खास गाल इतने मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, ओटी, हेल्थ टेक्नीशियन सब कोर्सेस पिणा। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबतो 07115635642 आई 03108166111।
1: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट के तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां के शहर सखर में। मेदे जा मसला, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी ए बादी बवासी, जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रो है। रोजाना सुबह 9 बजे का शाम 5 बजे तई जुम्मो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नजद PSO पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड, सखर। राबते के लिए 03112082600 03317143311।
0: जमींदार भाईरन के सिंध पेस्टिसाइड तरफा अस्सलाम वालेकुम। जी त हर साल वांगुर हन साल है सिंध पेस्टिसाइड आबादकार भाईरन लाए जरे माहिरन जी निगरानी में खिदमत में पेश करे तो कमंद जे फसल लाए तमाम घट खर्च में जदीद टेक्नोलॉजी सा नवा भाण आई जिंक जेके कमंद जी फी जरे पर पैदावार बढ़ाए सकन थियो। इन का अलावा एसपीसा बगल्स आई रावी कंपनी जी फुटे जे जीत जी दवा सारे लाए जिंक कंदगा जी दवा आई जहर कमंद लाए इंपोर्टेड पोटाश 25 किलो में आई पोटाश 20 लीटर झरियो पिण मौजूद है। भाईरो इन महीने के दौर में बन बड़ डीलर का बचो सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी ते अचो। प्रोप्राइटर श्याम लाल प्रदीप कुमार पर वाकिल राबते जिले 03487414029। एड्रेस सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी नर्स हबीब बैंक पर वाकिल। 44 साल जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद। 44 साल के वसी तजुर्बे से हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन की पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश बेन मुख्तलिफ़ सेहत की तकलीफों लाए माहिराना होम्योपैथिक सलाह मुआसर इलाज फराम करे रहा है। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर नए पिंडवारी पुल के सामू PSO शेल पेट्रोल पंप के विच में। टाइमिंग छंछर का खमीस सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे तक। अपॉइंटमेंट वधिक मालूमात लाए हिंरी राबो करो 03 26 2020 0044। जी हाँ, खात्माए दर्द एक अहड़ी दवा जेका सूर खा दे निजात। सूर चाहे जोड़न जो हुजे, पठन जो हुजे, जेल जो हुजे या घिंटिया जो, कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कहीं भी नंढे वडे सूर जे लाए आजमोदा दवा आए। 7 दिन जी दवा सिर्फ 450 रुपयन में। खात्माए दर्द मिलन जो हंध बेड़ी चौक नादरा ऑफिस के सामू अल नूर दवा खाना रोहड़ी। राबते जी लाए 03585 0060
2: GA Sakhar FM 88
3: Sakhar ki awaaz।

0: Okay, ji, welcome back once again. Aap sun rahe hain Zindagi Gulzar Hai. मुझे कहते हैं आज ये रुखसार है आपको मेरे साथ पूरी एक बजे तक का है जी. एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए. हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल की जा सकती है. सो आप लोग कॉल कीजिए. और आज का जो टंग टेस्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएंगे बबलू ने, नहीं कह के दिखाएंगे कि बबलू ने भुने बादाम भरी बोरी में. मेरा भी गलत हो गया, सॉरी. बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. ठीक है, ये कहना है बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. है ना, बहुत उलझा देने वाला टंग टेस्टर है. अब देखते हैं कि आज का टंग टेस्टर कौन कह पाता है. हेलो. ओके, हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहां से?
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन कहां से?
1: जी एम बलोच.
0: जी एम बलोच भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र है. आप सुनाए?
0: मैं बहुत अच्छी. मुझे बताएं टंग टेस्टर सुना?
1: टंग टेस्टर सुना, लेकिन मसला ये कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ. मेरा फॉल्ट सही नहीं होगा ना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता.
0: क्या सही नहीं होगा?
1: मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये मेरी वॉइस मैं खुद सुन रहा हूँ अपनी. ठीक है ना, जब तक ये फॉल्ट सही नहीं होगा मैं बड़ा वो डिस्टर्ब होता हूँ कि आप, मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ.
0: अच्छा, मतलब आपको आवाज वापस आ रही है आपकी, तो ये नेटवर्क का इशू है, इसमें हमारा क्या कसूर है?
1: देखे, आप उसको एक बार ऑफ एयर करें, इसको ऑन एयर न करें. ऑफ एयर में मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज मुझे सुनाई देती है या नहीं. अगर नहीं सुनाई देती है तो आपकी तरफ से कॉल है, क्योंकि जब तक आप इसको ऑन करते हो ना ये हेडफोन को, तो ये मेरी आवाज मुझे डबलिंग में आती है.
0: अच्छा, अब इशू क्या है आपको? आपने मतलब ये शिकायत कर ली, उसके बाद और कुछ कहेंगे?
1: नहीं, सुने प्रोग्राम को मैं डेली सुनता हूँ.
0: हाँ जी,
1: तो बहुत जाता है, काम कर मेरी कॉल भी जाती है
0: जी.
1: लेकिन है ना, मैं उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ. मुझे पता है कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ.
0: लेकिन बात तो हो जाती है ना, अगर आपको आवाज डबल आ रही है, नहीं अगर आपको डबल आ रही है तो बाकी लिसनर्स पे ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डबल आवाज आ रही है. सो हो सकता है कि नेटवर्क का कोई इशू हो, या कोई हेडफोन्स वगैरह, या फिर कोई फोन का इशू भी हो सकता है.
1: सो मैं आपको बताऊं,
0: कोई बात नहीं,
1: जितने भी नेटवर्क है ना, किसी में कोई शिकायत नहीं, मैं सब में कॉल करता हूँ. ठीक है ना, फिर सबका नेटवर्क ऐसा है जिसमें मेरे को डर लगता है. मैं नैन साहब को कॉल कर सकता हूँ ना, आपको
0: चलिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अगर मैं इस कन्वर्सेशन में जरा आगे गई तो एक तो सेगमेंट का टाइम चला जाएगा, एंड दूसरा फिर ये जो आपको मतलब इतनी कोई ज्यादा कोई शिकायत है तो आप बस फिर सुने, आप कॉल ना करें, यही कह सकती हूँ मैं. थैंक यू सो मच भाई आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया. आप मुझे डेली सुनते भी हैं, लेकिन कॉल के बारे में जो आप बता रहे हैं कि आपका आवाज आपकी वापस आती है, तो हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, कोई हेडफोन्स लगाने का इशू, या कोई फोन में भी इशू हो सकता है कि आप किस फोन से कॉल मिला रहे हैं या किस जगह पे जाके ऐसी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ आजकल नेटवर्क के इश्यूज हैं, और हो सकता है कि ऐसा ही हो. ठीक है, क्योंकि अगर आपको आ रही है तो बाकी लिसनर्स को भी आनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट कॉल है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: सरदार, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे बताओ सरदर्द के टंग टेस्टर सुना है आपने?
2: बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे
0: में बंद
2: किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने
0: बादाम
2: भरकर बंद बॉक्स में बंद किए.
0: वाओ, क्या क्या मतलब क्या स्पीड है, और क्या कैसे फ्लो में जा रही हो, क्या बात है. माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ, अच्छी अच्छी खासी चीजों को ना नजर बड़ी जल्दी लगती है, तो माशाल्लाह कह देना चाहिए, है ना? سر درد
2: آ رہی ہے آپ کی آواز
0: آواز آ رہی ہے. اچھا کچھ اور کہنا ہے سر درد؟ تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھو اپنا, اللہ حافظ. اور یہ کیا آ گیا جو بھی آیا 03000113488 جس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے جو کہ آپ لوگ کر رہی ہیں. نیکسٹ کالر ہے وہ. ہیلو, وعلیکم السلام. اوکے, سلام کرتے ساتھ ایک کال چلی گئی ہے پانی میں. ایک اور کال لے کر آئیں گے پانی سے اوپر. ہیلو, وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ کون سفدر بلوچ مورو سے. کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
3: الحمد للہ.
0: میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ ٹنگ ٹوسٹر سے نہ بولیں گے؟ بول دیں. مشکل ہے. چلیں پھر, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ. یہ سیگمنٹ انہیں لوگوں کے لیے جو ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے. اینڈ نیکسٹ کالر ہم دیکھیں گے کون ہے. آئے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کال ڈراپ ہو رہی ہے. ویری بیڈ, نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری آواز کو. خیر ہم گانا سنیں گے, گانا انجوائے کریں گے. گانا میں پلے کرنے جا رہی ہوں فار دا ویری فرسٹ ٹائم بائے نصرت فتح علی خان. سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے.

0: It's 12:30 PM. This sound check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: जीए सखर FM 88
3: सखर की आवाज.
4: इन बुटीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रीन लाइ जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जो रोटाणो छटाई करण में आसान ऐं नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रीन लाइ मिटीअ जो मान वधायो.
0: अगर खूबसूरती खपे तो आर्ट्स अपनायो. आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में. डार्क स्पॉट्स, एक्ने और स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और ये शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
5: तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी.
6: त पोइ भलीकार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
5: सखर शिकारपुर रोड ते,
6: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
5: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
6: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो.
5: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
6: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज जा,
5: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइ कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़.
6: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
5: साफ़ मिठो पाणी,
6: बिजली, गैस,
5: 24 कलाक सिक्योरिटी,
6: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
5: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो.
6: अॼु पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
5: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री.
6: कॉन्टेक्ट
5: 03-00-93-17-25-2
6: and 03-13-27-57-860. Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar.
5: Tawaje mehfooz mustaqbil aur behtareen investment jo behtareen intekhab.
7: Yaar macha kya kithe vanya ghar mein baitho hai ha.
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
9: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
10: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

जी, सफदर बलोच ने बहुत सारे शेर फेंक दिए हैं. थैंक यू सो मच शेर फेंकने के लिए. इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम सिंध की आवाज, आरजे कैसी हो आप, सलामत रहें. हमेशा आपकी आवाज तो आती है मोबाइल पे, मेरी नहीं आती क्यों. आज भी थर्सडे की तरह. अच्छा कौन है आप, वही जो कॉल पे आए थे वही हैं आप या कोई और है? नाम तो लिख दिया करें.

इसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम सिंध की आवाज आरजी रुखसार, कैसी हो आप? सॉन्ग प्ले करो दिल मेरी ना सुने बाय आतिफ असलम, बॉलीवुड कंटेंट नहीं प्ले कर सकते, सॉरी।

0: सक्खर FM 88
1: सक्खर की आवाज
2: तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िला जारी आहिनि चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स जी बी एस एन जी बी एस एम पंज सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी डी पी डी ॿिनि सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स एल एच वी सी एम डब्ल्यू सी एन ए ख़ासि सहूलियतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद ॿिन सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री जॾहिं त डी पी डी प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी ओपीडी जी बहितरीन सहूलियत हीउ इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिनि तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस ओटी हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108161111
1: छा अव्हां अच्छनि वारनि खां परेशान आहियो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज़ बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की ख़ासि मौके जी तयारी हर लम्हे पंहिंजो बहितरीन अंदाज़ ज़ाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख़्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज़ ऐं नई ताज़गी अॼु पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्ट क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
3: जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेन लाइ जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो उतारो छटाई करण में आसान ऐं नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेन लाइ मिटीअ जो मान वधायो
2: चोएतालीह सालनि जो तजुर्बो हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद चोएतालीह सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज जोड़नि जो सूर मैदे में जलन गैस बदहज़मी तेज़ाबियत गुर्दनि जी पथरी बवासीर बे औलादी वारनि जो किरण गंजपण फाले जी ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराम रहिया आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर नए पिंडवारी पुल जे साम्हूं पीएसओ ऐं शेल पेट्रोल पंप जे विच में टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राबितो करियो 03-26-22-00-440
0: जीए सखर FM 88
1: सखर की आवाज़

Once again, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार लास्ट लिंक में वापस आ चुकी है जी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, यानी कि वक्त का मुकाबला सख्त हो रहा है।

0: के साथ साथ हम चलते हैं जी आगे और शो की बहुत सारी कॉल्स हम रिसीव करेंगे 03000-99-3488 के ऊपर. लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे और चेक करेंगे कि कौन है कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम. या अली मदद.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर. पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर. अरे इस दिल में और कौन है, मैं मां तुम ही दो.
0: अरे वाह,
1: अपने अल्ताफ बलो जाग जाने का सलाम है मोहब्बत कबूल हो.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: मशर की तशनगी से क्या खौफ है अल्ताफ, कौसर का जाम देगा मुझको इमाम मेरा. लोगो साहेब हुस्न की आमद है इंतजार, ताकि का सबक है जाम कौसर से प्यार करो. अरे शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे. शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे. ये इल्जाम देकर न दीवाने को दाग दार करो. बैठाने से तेरे दर तक है मेरी मंजिल, तुम जो चाहो वही रास्ता अख्तियार करो. अरे हुदू के रूबर, अरे हुदू के रूबर उन्हें अपने अल्ताफ को शर्मसार करो. अरे कुछ भी न सही, अरे कुछ भी न सही, मेरी सदाकत का तो इतबार करो.
0: वाह क्या बात.
1: अल्लाह आपको अपने मान में रखे, पल पल पाक के साए में रहे, और जो न मांगो वो आपको मिल जाए. मदीने अली
0: सरकार. बहुत खूबसूरत दुआ और बहुत खूबसूरत बात. तो क्या बात है जी, क्या बात है. एंड इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम भी जा रहा है इख्तिताम की तरफ. और इसके अलावा इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं. रुखसार क्या हाल है आपका, शो में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मैं स्कूल पढ़ाई चल रही है और मामू की शादी है, का पता ही नहीं चलता. और सिंधी शेरू प्ले करो मीरपुर खास से रुखसार मरी. थैंक यू सो मच रुखसार मरी, आपने हमें ज्वाइन किया. तो वही लास्ट मिलेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट्ठा होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: FM 88
1: सिंध की आवाज।
0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

इसराइल जे इंतहा पसंद कौमी सलामती जे वज़ीर नफ़रत जोगो बयान, इसराइली फ़ौज खे हर राति 30 खां 40 माण्हू मारण घुर्जन। इसराइली फ़ौज खे ही कार्रवाई सिर्फ़ ख़तरे जो सबबु बणजंदड़नि ताईं महदूद न हुअणु घुर्जे। गज़ा में कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके जीअरा रहण जे क़ाबिल न आहिनि। ईरान जे नाइब परॾेही वज़ीर चयो आहे त इसराइली ॾोहारनि जे इतराफ़नि जो हिसाब ॾिनो वञे।

भान सैदाबाद लग झांगारा में पीण जे पाणी जो बोरान संगीन समय माण्हुनि जो धरणो झांगारा एक्शन कमेटी जे सॾु ते समय ॻोठाणनि सेवन झांगारा रोड ते धरणो हयो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त कुदरती वसीलनि सां मालामाल हुजण बावजूद झांगारा वासी पाणीअ लाइ तड़पी रहिया आहिनि। करोड़ रुपियनि जी लागत सां मंज़ूर थियल आरो प्लांट खे यूसी चेयरमैन हलाइण लाइ तयारु न आहे। टिनि ॾींहनि अंदरि पाणी जी खोड़ ख़तमु न कई वई त इंडस हाईवे ते धरणो हणंदासीं। दड़ो जे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरनि दवाउनि ऐं बुनियादी सहूलियतनि जी खोड़ ख़िलाफ़ एहतजाज जारी आहे। सियासी समाजी अॻवाननि, पैरामेडिकल स्टाफ ऐं मरीज़नि जे वारसनि एहतजाज जो मुज़ाहिरो कयो। अॻवाननि जो चवणु आहे त अस्पताल जा इंतिज़ाम PPHI हवाले थियण खां पोइ अस्पतालनि में सहूलियतनि जी खोड़ पैदा थी वई आहे। ग़रीब माण्हू इलाज लाइ परेशान आहिनि। अस्पताल मां डॉक्टरनि ऐं दवाउनि जी खोड़ ख़तमु कई वञे। दादू अस्पताल GMS जे किरदार कशी करण ते अदालत पारां जवाबदार ते 50 लख ॾंड। एडिशनल सेशन जज दादू जे अदालत जवाबदार खे मुख़्तियार जतोई खे 50 लख ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। डॉक्टर अमजद मस्तोई अदालत में पिका एक्ट ऐं साइबर क्राइम तहत पटिशन दाख़िल करायो आहे।

झोरो नारो में शागिर्दनि जो ज़रई यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाज जारी आहे। शागिर्दनि जो चवणु आहे त गुज़िरियल 6 महीननि खां उमरकोट कैंपस बंदि पयल आहे, असांजी तालीम तबाह थी रही आहे। ज़रई यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस जल्द खोल रहा आहे, असांजी तालीम तबाह थियण खां बचाई वञे।

0: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट हले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन ता असा दरे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन तवरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यू आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समाज उनको मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। उर्कुली दुआओं के संबंध है, सेहतों की बारिश और वासुल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तारों तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जल्दी का नाम मस्ती। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद होते हैं, प्रोग्राम में आप लोगों के लिए ढेर सारी बातें की जाती है, प्रोग्राम में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लगाए जाते हैं, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ गपशप होती है। अच्छा, उसके अलावा प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में आपका हमारा साथ होता है, यानी कि अगर आप हमारे साथ मौजूद होते हैं तो प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन भी करते हैं। वो कैसे ज्वाइन करते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तरीकेकार नहीं मालूम तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। ऐसे के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं और जनाब आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जी साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं, सो लिसनर्स फॉर रीजन टेकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम और यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिसनर्स हमारे साथ मौजूद और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही हों यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाईजान आपकी सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 उल्की स्माइल ला रहे हैं और यहाँ पर ऐसे करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगा से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है। बहुत ही प्यारा सा कसीदा हम यहाँ पर सुनने वाले हैं और सीधा सुनने के बाद हम जैसे ही प्रोग्राम में वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा वाली बातें हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ करेंगे जी ढेर सारी मस्तियां क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है जल्दी का नाम मस्ती, आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक का। तो चलिए जी एक प्यारे से कसीदा एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। बिल्कुल जी, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक।

0: जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब सल्टी का नमस्ते, आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन कौन है मुझे बताने के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप क्या करेंगे जनाब, बताते हैं सब कुछ बताते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप आज के प्रोग्राम का टॉपिक जान लें तो वो क्या होने वाला है वो जरा सबसे पहले बता लेते हैं। आज है जनाब मंडे, मंडे का दिन है और मंडे का दिन ऐसा समझ लें कि जब भी आता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि भाई ये सारे काम तो हमें मंडे वाले दिन ही करने होते हैं। ऑफिस जो हैं उनका पहला दिन होता है या फिर बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये मंडे क्यों ही आखिर आता है हमारी जिंदगी में। तो आज मंडे है तो उस हिसाब से मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया जाए और आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मंडे मंडे के बारे में एक आपने लाइन बोलनी है जो कि आपको लगता है कि ये लाइन जो है ना मंडे के ऊपर बिल्कुल फिट करती है, और अगर मंडे के हिसाब से देखा जाए तो मंडे के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है ना मंडे से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, और मंडे देखा जाए तो भाई थोड़ा बहुत सा नफरत के लायक भी है ऑफिस के हिसाब से देखा जाए, स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो बेचारा मंडे बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बदनाम भी हो चुका है और बहुत ही ज्यादा ऐसा वाला सीन बन चुका है कि मंडे बेचारे को हर वक्त जो है ना वो लोग कहते रहते कि भाई मंडे तुम क्यों ही आते हो। तो आज बिल्कुल आपने ऐसा करना है, मंडे के लिए कोई एक ऐसा जुमला बताना है, एक ऐसा जुमला बोलना है जो कि आपको लगता है कि ये तो भाई मेरे हिसाब से मंडे के लिए परफेक्ट है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे, मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ना स्कूल जाते हैं, ना कोई जॉब करते, ना ही कोई हमारा ऐसा कोई काम है, लेकिन फिर भी मंडे के लिए जो हमारे दिल में है ना कि भाई मंडे ने हमारा पूरा बचपन जो है वो खराब कर दिया था, ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते। एक बचपन वाला ट्रॉमा जो है ना वो मिला हुआ है हमें मंडे जनाब से। तो आप बताएं कोई ऐसा जुमला जो कि आपको लगता है ये मंडे के लिए परफेक्ट होने वाला है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनिए। और उसके अलावा मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गाना मौजूद है, तो हम एक प्यारा सा गाना यहाँ पर आप लोगों के लिए लगा देते हैं। अच्छा, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम धीरे धीरे जो है ना वो थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। वैसे भी वो वाली बात है ना, एक ही चीज हमेशा थोड़ी ना टिकती है, तो गर्मियां हो या सर्दियां हो हमेशा थोड़ी ना टिकेगी। मौसम अच्छा हो चुका है, रात के टाइम तो क्या ही बात है। ओ शहजादी।

हाँ जी शहजादी, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दीजिए जरा। मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। रिहाना खान में सुन रही हैं बखर से। रिहाना आपको वेलकम कहा जाता है। वासा भाई की तेदी से डो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बोले ले सलाम बदर किदे केड़ा हाल है खुशाही चाक चगी भली सब मजे में ताऊ ता किया है। रिहाना कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं रिहाना खान बखर से, वेलकम टू शो। आपको भी वेलकम कहती रिहाना। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। एंजल सिस्टर आप कैसी है, सब मजे में ताऊ बदाय। उनके अलावा यूनिस खोड़ो हमारे साथ कहती है अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यूनिस खोड़ो गोठ दौलत खान से गड्डा कहते असान तो तुझे खातिर सनी दुनिया में सारी छनी पर खबर ना है तू कहजे करे असान की भी सारी छड़ियो। वाह वाह बिल्कुल सही लाइक इंदी शहजादी गुम थी लबे तदे की बुदाई से जोश।

شهزادی، او موزی شهزادی، او موزی شهزادی. वैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, अगर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक इंसान जो है ना वो उसका तस्वीर आ जाता है. कोई सैड गाना हो, कोई अच्छा गाना हो, कोई रोमांटिक गाना हो, तो हमारे जहन में एक इंसान जो है ना वो जरूर उस गाने के साथ जो है ना वो ऐसे माइंड में घूम रहा होता है. तो ये शहजादी गाना सुनकर आपको कौन सी शहजादी याद आ गई? बात है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा गाना हमने एंजॉय किया. अच्छा, फेसबुक वाले जो लोग हैं वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए जरा, और बताइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है. एक और ब्यूटीफुल सा गाना हमारी लिस्ट में है. आज मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को थोड़े से ओल्डी जो गाने ना, सिंधी वाले ओल्डी गाने वो सुनाते हैं, क्योंकि इनका अलग ही स्वैग है. सादिया अली हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हाय, आप या कैसी हैं? आई होप यू आर फाइन. यस, मूसा कोरी हमारे साथ मौजूद है. मूसा कोरी भाई, वालेकुम अस्सलाम. और निदरी आ चुकी हैं, अस्सलाम वालेकुम प्यारी आरजे, वेलकम टू शो. मैं भी साथ साथ हूँ, क्या बात है, आप भी हमारे साथ साथ हैं.

बाजार भाग रहे, हम भी आपके साथ आ रहे। हाँ जी हाँ जी भाई जान, सादिया की यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आपका शो सुन रही है, नादिया नाम है उसका। वेलकम करो ना नादिया, आपको भी वेलकम कहते और कहती है आप ही। चले कोई बात नहीं। और हिदायतुल्लाह कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आज? तो ये सॉन्ग सुनाना शायद बबरका महबूब तू डिस मुकदर मोजो, यो गानो असा कल वारे शाम वारे प्रोग्राम में बुधो वो सी मुखे नवी खबर पर मुझे नहीं हलाई उठो तो मु खबर पे अच्छा ही तो असा शाम बुधो सी सो हलाईंदासी कुछ नहीं इंतजार के। आबिद द्रोही नौशिरो फिरोज खान से गड मौजूद है के दे शो गुड है आपका थैंक यू वासा भाई के दे अदी सिडो जवाब जड़ी आचर गुजरंदो हुयो आई सोमर जी सुबह थींदो हुई अंदर सड़ी वेंदो हुयो स्कूल वनण जे करे सोमर अन ये डिया का वठी भलो नाए बिल्कुल बचपन का वठी जको ना सोमर खान सा के नफरत आ उनन खास करी मानन के जके बाबा कम खान थोड़ो खुश नैन हुंदा पढ़ाई का खुश नैन हुंदा पूछन मंडी अगर अच्छी चोट हो।

क्या बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। दर्दे दिल हमारे साथ माजो दीदी, हेलो स्वीटी। सिद्धार्थना कहते वैसे सिद्रा आज मैंने न्यूज सुनी। हाँ मैंने भी कुछ ऐसा सुना था, शायद ये कुछ है उसका लॉजिक पानी के साथ। इसको थोड़ा डीपली मैं समझने की कोशिश करूंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि असल क्या पता है, क्या मतलब इस चीज का रीजन है। और हाँ कोई है लिंक जरूर इन दोनों का आपस में। अच्छा चाचा खालिद के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, आप कैसी ही हो? फाइन सफा व मजे में आया था बताया किया है। और कहते आचर सदोरो सुमर सड़ियो यू छा ये नके बाबा। बिल्कुल जी हिकड़ो मानू आ जिको मोती दानू आहे आई वरी दाडो सोनू आहे। सादे के यहां पे प्लीज पोएट्री रीड कीजिएगा। सारे चेहरे वाजे ना कर ए जिंदगी, कुछ लोगों में तो मेरी जान बसती है।

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो. हिन खां अलावा तव्हां टॉपिक खे फॉलो कयो पिया. सूमर वीचारे जे लाइ सूमर जेको ॾियारो सूमर आहे, ईअं न त को माण्हू हुजे जंहिंजो नालो सूमर हूंदो आहे, उनखे तव्हां को जुमिलो चई वियो. अगरि डे जेको आहे मंडे, उन लाइ तव्हांखे को जुमिलो चवणो आहे त उहो तव्हां चई सघो था. बाबा ख़बर पए त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके वीचारे सूमर खां सड़िया वधनि था. ऐं उन खां अलावा इहे मां साथ अहिड़ो मौजूदु वालेकुम असलाम दिलबर आपी छा हाल आहे, सफ़ा मज़े में तव्हां ॿुधायो. और इहे मौजूदु वालेकुम असलाम आपी आपका शो वेरी नाइस ए गोठ मोहम्मद तैयब थीबू खां हबीबुला थीबू भाई असांखे जॉइन करे चुको वेलकम कहते हैं भाई को. ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम नमस्ते मौला अलैहिस्सलाम मदर. हेलो हाय हाउ आर यू. कहते हैं कि मेरा मस्त मंडे वेरी नाइस. फिर गूगल भाई से जी एफ एम की सुपर आरजे भाव को ज्वाइन किया. शो चलती का नाम मस्ती में. ओके एंजॉय लाइफ एंड गुड शो. जयपाल भाई आपको वेलकम कहा जाता है. फिर टॉपिक मंडे ब्यूटीफुल डे. मेरे लिए तो क्या बात है मंडे की जनाब. ओके भाव कराची की, कराची की क्वीन के लिए एक सॉन्ग हल्ला गुला सॉन्ग. वैसे भाव वो बात बिल्कुल मैं समझ गई. जयपाल भाई ठीक है. और यदि भाऊ हमने इजहार खुशी से मंडे और हमने कराची में कारोबार भी मंडे एंड हमारी शादी भी मंडे को होगी तो थैंक्स मंडे. मतलब ये सोचकर आपने सब चीजें करी हैं कि बस जो करना है मैंने मंडे के दिन स्टार्ट करना है. वैसे हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई उनके लिए डे जो होता है ना वो बहुत ऐसा होता है कि भाई हमारे लिए ये डे लकी है तो वो उसी दिन वो तमाम काम करते हैं. हाँ हर किसी का अपना अपना थिंकिंग होता है. जयपाल भाई ने तो सारे काम मंडे पर किए हैं. जयपाल भाई के लिए मंडे तो वो सही है भाई, अच्छा है, गुड डे.

हसीना पोपड़िया गजबजी छोकरिया दमादम भागने वालों मानी दो यह तो हकीकत है।

वाह साईं वाह साईं वाह हसीना के केर मारी दो बाबा और जड़ी वरी नंडड़ा हुंदा से नी गानो बुदना से पसा चंदा से छोथा चवनी त हसीना के केर मारी दो आई ने बिनी में फरक आहे

बातें थी के साथ साथ प्रोग्राम आप सुनते रहेंगे पूरे पूरे तीन बजे तक। जल्दी का नाम मस्ती और यहाँ पर आप लोगों के साथ मस्तियाँ होंगी जनाब। प्रोग्राम में आपका हमारा साथ और यहाँ पर जी गाना आप इंजॉय कीजिए। हसीना पोपड़ी आई हसीना पोपड़ी बुधन का पोए ऐसा विंदा से न्यूज ब्रेक जी तरफ का पोए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होगा और वापसी जल्दी मोटी तवानींदा से तमाम करने में जोते बैठा हो जो ओ ही मनी ओ ही मोटू था। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 पर सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फौजी मशकूं महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो त किम जोंग सां सुठनि लाॻापनि सबबि गॾियल फौजी मशकनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशकूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी। पार्लियामेंटी अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक जी सदारत हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवणु आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास अॼु 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्यवाही बाबति मुशावरत कई वेंदी।

इसराइल जे इंता पसंद कौमी सलामती जे वजीर जो नफ़रत जोगो बयान बेन गुर चयो आहे त इसराइल फ़ौज खे हर राति 30 खां 40 माण्हू मारणु घुर्जनि। इसराइल फ़ौज जे हिकु ई कार्रवाई सिर्फ़ ख़तरे जो सबबु बणजंदड़नि ताईं महदूद न हुअणु घुर्जे। गज़ा में कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके जीअरा रहण जे क़ाबिल न आहिनि। ईरान जे नाइब परॾेही वज़ीर चयो त इसराइली ॾोहारनि जे इतराफ़नि जो हिसाब ॾिनो वञे। ईसाइन जे रुहानी पेशवा पोप लियो पारां ओलह किनारे में फ़लस्तीननि ख़िलाफ़ ईसाइन जे रुहानी पेशवा पोपलियो पारां ओलह किनारे में फ़लस्तीननि ख़िलाफ़ तशदुद जे ख़ात्मे जो मुतालबो। पोपलियो चयो त आलमी बिरादरी पायदार अमुन लाइ बरियासती हल लाइ किरदार अदा करे। समुंड दरिया जबल बेट कारूं झर गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं। भले केस दाख़िल कयो वञे, धमकियूं ॾियो, का परवाह न आहे। कराची में स्ट्रेप्स ऑफ दी दुबई पारां सिंध नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब में क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो ख़िताब। अयाज़ लतीफ़ अली जे चयो त तरक़ी क़ाबिज़ धुरियुनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धड़नि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुरिजे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न आहे, पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराची खे सिंध खां धार करणु ऐं सूबे जे नाले ते सिंध विरिहाइण खे अवाम क़बूल न कंदो। भान सैदाबाद लग झांगारा में पीअण जे पाणीअ जो बोहरान।

12 में अणॼातल शिकार नायब नसल के टिन हरण के गोलियन जो खाज बणायो। ब हरण सरजमीन ते तड़पी तड़पी मरी वया। एक हरण के गोठाणन जख्मी हालत में हथ करे वरतो। रहवासन जो चवण आए त असां वट जंगली जीवत मुकम्मल गैर महफूज आहिन, इंतजामिया कदम खणे।

0: धड़ो जे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दवाओं ने बुनियादी सहूलतन की खोट खिलाफ एहतजाज सियासी समाजी अगवाणन पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजन के वारसन एहतजाजी मुजाहरो कयो। अगवाणन जो चवण है अस्पताल जा इंतजामिया पीपीएचआई हवाले थे अस्पताल में सहूलतन की खोट पैदा थी है। गरीब मानू इलाज लाय परेशान है। अस्पताल में डॉक्टर ने दवाओं की खोट खत्म कई वे। दादू अस्पताल जीएमएस के किरदार कशी करण से अदालत पारा जवाबदार से 50 लख दंड। एडिशनल सेशन जज दादू की अदालत जवाबदार मुख्तियार जतोई के 50 लख दंड की सजा बुधा छी। डॉक्टर अमजद मस्तोई अदालत में पिका एक्ट ए साइबर क्राइम तहत पटिशन दाखिल कराया हो। खैबर में डॉक्टर की मुबैना गफलत सबब हमला औरत बार समेत फोत वारसन शहरन जो एहतजाज। अस्पताल आंदल प्राइमरी स्कूल की टीचर हिना बानो माछी डॉक्टर की गफलत सबब हयाती विञाए वेठी। औरत के मुड़स मोहर माछी जो चवण है घरवारी मुसलसिल तकलीफ जो दाहू कंदी रही पर अस्पताल अमले दुरुस्त इलाज न कयो। अस्पताल इंतजामिया जिम्मेवार डॉक्टर अमले खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ डारो वे। ढोरो नारो में शागिर्दन जो जरई यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट की बंदिश खिलाफ एहतजाज। शागिर्दन जो चवण है गुजरियल 6 महीनों का उमरकोट कैंपस बंद पल है। असाजी तालीम तबाह थी रही है। जरई यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस जल्द खोल रहा है। तालीम तबाह थियण का बचाई वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छोती डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो 10 साल का घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
4: हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जरा ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जो है ना वो बस ये सोचे कि भाई हमने अगर आप कोई नेकी भी करते ही ना तो वो आप किसी और के साथ नहीं करते बल्कि वो अपने साथ करते, क्योंकि उसका जो सिला होगा वो आप ही को मिलता है। बाकी अगर आप नेकी करके दूसरे से उसका सिला मांगते हैं तो ये फिर थोड़ा काम मुश्किल हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। तो नेकी करें, बस उसे दरिया में फेंकने वाला सीन बनाए।

साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मक्खन जी सी आर जे कैसी है माशाल्लाह। सदरा मुस्कान कल किथे हुई शो दम दम आदम मस्त कलंदर है। कल थोड़ो नेटवर्क जो इशू हुयो न वजह से प्रोग्राम कोन कयो सी। बाकी तवा लिखियो एक मंडे और के बाद तवा जो मैसेज जको मिसिंग पार्ट थी वयो है। सो थैंक यू सो मच साइमा मीर तवा से सगन मौजूद आयो। मकसूद कहते हैं मेहरापुर से हेलो टाइगर मुस्कान मुझे गाना सुनाना है शमन का। मां कोशिश क्या थी गानों मुखे मिलियो तो हलाई वठूंगा ठीक है। और ये हमारे साथ हैं जयपाल भाई कहते भाऊ अर्ज किया है जिस शख्स की गलती गलती ना लगे किताबी इश्क की तफसीर में उसे मोहब्बत कहते हैं। या तो सही गाल कही महबूब जी गलती गलती ना ही लगनी पर तेज जैसे शादी नहीं थी उन्हें कहा बोल तो बाबा सही गाल भी गलती लगन दिया

पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐवे ही आपको छोड़ देती हूँ भाई, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है अश्वा खोड़ो, आपको वेलकम कहते हैं। और सादिया कहती है टॉपिक हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, सही सही। और चाचा कहते हैं गाने जी रुकेश टा बिल्कुल ना, जो गानों में डिसीवर तो हुआ है। और कहती आज आपका शो हेडफोन लगाकर सुन रहा हूँ, डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, नितिन कहती आज मैं खाला के घर हूँ और मेरे साथ सब आपका शो सुन रहे हैं, सबको वेलकम करो। चलिए भाई, सबको सबको सबको वेलकम किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ मौजूद है, ये बहुत ही प्यारा गाना है जो कि आप सबको डेडिकेट रहेगा। तो फिर बस सुनिए जरा गाना।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं अब वैसा नहीं कि नेकी कर और दरिया में डाल, अब ऐसा है कि नेकी कर और टिकटॉक पे लगा। हाँ ये सही बात है, लेकिन हम तो नहीं चलाते ना टिकटॉक, तो बस हम दरिया में फेंकेंगे लोगों को डालनी टिकटॉक पर। और गुलाम अकबर खास के लिए हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम लाड़काना की कोयल, आप की क्या हाल चाल जी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं और आपको

0: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

गुड मनी मिलंदी और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद ब्लेस मोहम्मद उस्मान ब्रोही सकरण से कहते अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम गुड और वेलकम टू सिद्रा मुस्कान अंतहाल जेबा सिद्रा सॉन्ग सुनाओ जी शादी वाला गाना सुनाओ शादी वाला गाना सुनेंगे केंजी शादी करायो था वेरी और कहते हैं सिद्रा आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है सिद्रा जी प्रोग्राम 3 घंटे करो प्रोग्राम 3 कलाक का यहाँ बाकी ब्यार जी छाकंदा पो

कमल समान बलोच कहते हैं। भाई को वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में एंजॉय कर रही है हमारी साथी। वालेकुम अस्सलाम, आइए मारिया, हाउ आर यू माय डियर, गुड शो एंड गुड आरजे, थैंक यू वेरी मच मारिया, आप हमारे साथ ही, आपको वेलकम कहा जाता है। और फजीला सिंधी हमारे साथ हैं, फजीला सिंधी क्या कहती है, लिखती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादे सदरा मस्कान, कैसी हो जानू, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। इट इज सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को, कहती है सही बोल रही हो डियर, क्या मैंने सही बोला। टॉपिक कहती है स्कूल टाइम, मंडे आता था तो यूनिफॉर्म इस्त्री करना भूल जाती थी, इसीलिए मंडे बुरा लगता था। संडे इतना जल्दी गुजर जाता था ना, पता ही नहीं चलता था। और हम ऐसा करते थे, थोड़ा खेल लें, फिर ऐसा करते करते पूरा जो ना वो संडे गुजर जाता था। फिर वाकई ये सही बात है, जो काम था मंडे का वो हम सारा भूल जाते, फिर मंडे पर हमें जाकर सुबह सवेरे सारी चीजें याद आ जाती थी, फिर डांट भी खाते थे और काम भी करते थे। अच्छा वो तमाम चीजें जो थी उस टाइम हमें कितनी बुरी लगती थी, कितनी बुरी लगती थी, हम कहते हैं बस अल्लाह करे जल्दी से ये टाइम गुजर जाए, हम बड़े हो जाएं। अब वो सब बातें जो चीजें याद करती तो हमें कितना मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही वो तमाम दिन खत्म हो गए, क्यों ही

शहदादुल कहते सारे ट्रेंड खत्म हो जाएंगे, बस मोला योर निगरत का ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा, ये मैंने बनाया है ना इसीलिए मेरे बनाए हुए ट्रेंड कभी खत्म नहीं होते समझ रहे।

आए हाय वाह जो गानो बुधो सी वाह साईं वाह वाह साईं वाह मूसा कोरी भाषा की बुद्धि पयो अदी प्रोग्राम भलो आए थैंक यू वेरी मच मायरा कहती है सिद्रा आप कॉल नहीं लेती हैं क्या नहीं नहीं लेती मैं पता नहीं क्यों और मूसा भात आंजले मुड़ाई हलाय सी ना बुधो उन तो ताकि मजो आयो हो ना

अच्छा चाचा पता नहीं देखेंगे और मूसा कोरी भाई कहते अद्दी सूमर विचारो रोइंदो उंदो लगे ये तो वाकई असांगे भी अच्छा चाचा कहते हैं कोई इंसान किसी के साथ वफादार नहीं बस एक पाक साथ अल्लाह पाक ही है प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन ह्यूमन बीइंग वैसे सही कह रहे हैं पर वो कभी गाला है ना इंसान इंसान का सवाल कुछ भी ना है ना मतलब पांच जिंदगी में तवां के मानू जन मतलब सुठो इंसान वफादार इंसान मिलण एकड़ो वडी नेमत होंदी आ मुखे लगदो अल्लाह ताला जे तरफा अगर तवां के को सुठो इंसान मिलियो आहे वफादार इंसान मिलियो आहे आई उन हिसाब वारो मिलया जे जेको मतलब तवां चाहियो पया या एकड़ी वडी नेमत आ अल्लाह साईं जे तरफा सो उन जो कदर कयो शुक्र अदा कयो ऐं कुझु माण्हू वरी ईअं हूंदा आहिनि जेकी अगरि जंहिंजी लाइफ में अहिड़ो इंसान अची बि वेंदो आहे जेको हुननि खे सम्झंदो आहे हुन सां मुहबत कंदो आहे ऐं हुनजी हर हिकु चीज़ जो ख़्यालु रखंदा पर बदिले में हुन इंसान खे छा मिलंदो आहे वीचारे खे ॾुखु मिलंदो आहे सो इहे बि न कंदा कयो कंहिंजी सुठाईअ जो ऐं कंहिंजे भले अमल जो हुनखे जेको इनाम आहे न उहो ॾुखनि सां त कॾहिं बि न ॾींदा कयो तव्हां अगरि ॿियो कुझु नथा बदिले में करे सघो त महिरबानी करे हुननि खे ॾुखु बि न ॾींदा कयो सो कोशिश कयो इहे सभु चीज़ूं मूंखे लॻंदो आहे इंसान जे हथ में हूंदियूं आहिनि सो ॿियो कुझु न पर तव्हां कोशिश त करे सघो था न बसि कोशिशि कंदा कयो रशीद खोसो पासे सां गॾु मौजूदु आहे वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ई मिठो देरो से तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया सो थैंक यू हज़ार भाई कहते हैं सिस्टर बिग रिस्पेक्ट आपके लिए थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई हिदायतुल्लाह कहते हैं वो वफादार दोस्त मेरे पास है शहबाज तीन साल एक साथ थे फिर एक साल में गांव चला गया फिर अब वापस आया वैसे का वैसा ही मिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कभी भी

यही कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. गलती नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ये चीज करनी या नहीं करनी. तो बिल्कुल वही बात है. अच्छा हैप्पी फाइजा हमारे साथ है. वालेकुम अस्सलाम. सिडो जाने कैसी है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ. शो सुपर डुपर है, चलती का नाम मस्ती. माय क्यूट आरजे कहती है कि हैप्पी फाइजा सिडो जाने, मेरा मेरे चाचू की शादी है, कल से शॉपिंग में बिजी हूँ, आज हम सब अपने गांव जा रहे हैं. क्या बात है, एंजॉय कीजिएगा. वैसे अभी शादियों वाला मंथ जो है ना वह स्टार्ट हो चुका है. हमारी फैमिली में भी 3-4 शादियां होने वाली है, तो ये सही है भाई, एंजॉय कीजिएगा. और कहती है हम चाचू की शादी अपने गांव में करेंगे, आपको भी सलाह है चलो हमारे गांव. कौन सा है आपका गांव?

तू भले मैं वो माना कर पर लगी तो प्यार जेका चले बहुत अच्छा गाना था उन के अलावा ही वारो सॉन्ग है जो सनी प्रोग्राम टू लास्ट ट्रैक आई टाइम इतरो जल्दी तेजी से गुजरे पयो खबर ही न पई पवे अच्छा सो ही एस एस गड प्रेमचंद भाई मौजूद आई वालेकुम अस्सलाम रशीद खोजो बात आज मोहब्बतवान प्रोग्राम उधो पया मोहम्मद राशिद अवान ही के प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा है ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रही आमीन सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई को वेलकम कहते शादी तुम करे जी फरमाइश कई पंज बजवारी प्रोग्राम में तां चुकानो हलाइना मेहताब अली इंदर भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून अच्छा मायरा कहती है कि मैं मायरा हूँ और मायरा की सिस सनम आपको बहुत लाइक करती हूँ सिस आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ आपकी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है बहुत थैंक यू जी थैंक यू मेरा आवाज आपको सुकून देता है सो किसी के लिए तो सुकून का बायस हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है आपको वेलकम कहते हैं अच्छा अखलाक भाई आ चुके हैं अखलाक भाई लास्ट में आ गए थे नाइस यो थैंक यू अखलाक भाई

अच्छा निदली कहती मेरी छोटी मासी रिदा भी सुन रही है आज, उसको तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगी, बोल रही है माशाल्लाह। थैंक यू मासी, मौसी जी थैंक यू।

भी जी सो इसी के साथ ले देंगे आप लोगों से इजाजत वरी इंशाल्लाह सुभाणे तवां सां मुलाकात थी पई मुंजी अच्छा फजीला कहती है देखो मैं मुखलिस हूँ ना 2020 से सुनती आ रही हूँ तुम्हें और एड भी सुनती हूँ तुम्हारे शो के बहुत शुक्रिया जी चलें जी सो इसी के साथ आप लोगों से इजाजत वरी मुझे मुलाकात थे पई बाबू पंजी बजे वाली प्रोग्राम सो जिन मॉडर्न पोस्ट के लाइक शेयर ना कयो जल्दी कयो आई वरी किथे का गलती थी उठे तो माजरत कयूं था जिना फीडबैक रहिजी वया है जिना गाना रहिजी वया है सभी का माजरत कयूं था सो मुकलानी ना ही बाबू सिन सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिकी सदर जी मके दिफाई मुआहदे की हिमायत से वजीर आजम पारा ट्रंप की वाखाण। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो है मके गडियल दिफाई मुआहदे से अमेरिकी सदर के लफ्जन की वाखाण कया तो। सऊदी अरब ए तर्की से गडजी पाकिस्तान पहंजो ए खिते जो दिफा यकीनी बनाने में किरदार अदा कंदो रहंदो। दखण एशिया में एटमी तबाही जो खतरो टारण ते ट्रंप के भेटा पेश कया तो। अमून अवाम की रोशन मुस्तकबिल जरूरी ए बुनियादी शर्त है।

वफ़ाक़ी हुकूमत जे कर्ज़नि में 18,832 अरब रुपयनि जी वाधि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूदु 28 महीननि दौरान वफ़ाक़ी हुकूमत जे मक़ामी कर्ज़नि में 16,766 अरब ऐं परडे॒ही कर्ज़ में 2,066 अरब रुपयनि जी वाधि थी। जून 2026 ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ 83,642 अरब रुपयनि ताईं पहुची वियो। सिक्योरिटी फोर्सिसूं बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान खिलाफ़ कार्रवाइयूं जारी, वधीक ब दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलूचिस्तान जे इलाइक़े कुली ज़ाइक़ में ॻुझी इतलाउ ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारिजी विया, टे ज़ख़्मी थिया। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ़ यार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां यूनेशन्स मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं IAA ठाहिण जो सामान पिणु हथु कयो वियो।

तालिबान हुकूमत खिते के गैर मुस्तकिम करण लाए पूरा किसी बनजी चुको है। गरियल कौमन में पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तखार तालिबान हुकूमत टीटीपी के महफूज पनागाहों हथियार ए माली मदद फराहम कर रही है। टीटीपी बीएलए मजीद ब्रिगेड दाइश जहा इलाकई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वो खतरो है। सऊदी अरब तुर्की चीन ए कतर अफगानिस्तान ए पाकिस्तान विच में सालसी जो कोशिशों कर चुका है।

पार्लियामेंट अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार आया सादिक जी सदारत हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवणु आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार आया सादिक इजलास 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्रवाई बाबति मुशावरत कई वेंदी। घरू वज़ारत जे मातहत समूरनि सरबराहनि जो घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ जी सदारत हेठि इजलास। घरू वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गॾियल राब्ता मज़बूत करण ते ग़ौर। मोहसिन नकवी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कमु ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं ग़ैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटीअ ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाइनि।

इसाइन जे रूहानी पेशवा पोपलियो पारां ओलह किनारे में फलस्तीन खिलाफ़ तशद जे खात्मे जो मुतालबो पोपलियो चयो त आलमी बिरादरी पायदार अमुन लाइ बरियासती हल लाइ किरदार अदा करे।

0: समुद्रिया जबल बेट कारूंजर गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं। भले खे केस दाखिल कयो वञे, धमकियूं ॾियो या का परवाह न आहे। कराची में दुबई पारां सिंध नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब में क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अज़ लतीफ़ अली जो ख़िताब। अज़ लतीफ़ अली जे चयो त तरक़ी क़ाबिज़ धुरियुनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर तरक़ी धड़ियुनि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुरिजे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न आहे, पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराचीअ खे सिंध खां धार करण ऐं सूबे जे नाले ते सिंध विरहाइण खे अवाम क़बूल न कंदो। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम में PPHIA में ज़िम करण खिलाफ़ लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कराची में एहतजाज। बिलावल हाउस ना मार्च जी कोशिश, पुलिस खे रोके छॾियो। तलवार ते धरणे हणी रोड ब्लॉक करण। अॻवाननि चयो त सिंध हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे खानगाइण चाहे थी ऐं हुन जो बजट पिण खानगी कंपनी हवाले करण जी कोशिश कई पई वञे। मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां आयल केतिरनि ई लेडी हेल्थ वर्कर्स खे पुलिस गिरफ़्तार करे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते मुंतकिल करे छॾियो आहे। भान सैदाबाद लग झांगारा में पीअण जे पाणीअ जो बोहरान संगीन। रहवासियुनि जो धरणो, झांगारा एक्शन कमेटी जे सॾ ते सवें ॻोठाणनि सेवण झांगारा रोड ते धरणो आयो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त कुदरती वसीलनि सां मालामाल हुजण बावजूद झांगारा वासी पाणी लाइ तड़पी रहिया आहिनि। करोड़े रुपियनि जी लागत सां मंज़ूर थियल आरओ प्लांट खे UC चेयरमैन हलाइण लाइ तयार न आहे। टिनि ॾींहनि अंदरि पाणीअ जी खोट ख़तम न कई वई त इंडस हाईवे ते धरणो हणंदासीं। कोटली शहर ऐं भरपासे में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज। रहवासी SSP आफ़िस आॾो धरणो। अॻवाणनि जो चवणु आहे त कोटली शहर साइट ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में फुरू ऐं चोरियूं मामूल बणिजी वियूं आहिनि। बदमनी सबबि शहरी अदम तहफ़ जो शिकार आहिनि। पुलिस अमुन बहाल करण लाइ तयारु न आहे। अमुन अमान बहाल करायो वञे। कलोई लग झंगली जीवत गैर महफूज़ शिकारियुनि नायाब नसल जा टे हरण मारे छॾिया। ॻोठ केड़बारो में अणॼातल शिकारियुनि नायाब नसल जे टिन हरणनि खे गोलियुनि जो खाज बणायो। ॿ हरण सरज़मीन ते तड़पी तड़पी मरी विया। हिकु हरण खे ॻोठाणनि ज़ख़्मी हालति में हथु करे वरितो। रहवासियुनि जो चवणु आहे त असां वटि झंगली जीवत मुकमिल गैर महफूज़ आहिनि। इंतिज़ामिया क़दम खणे। अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फ़ौजी मशकूं महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो आहे त सुठनि लाॻापनि सबबि गॾियल फ़ौजी मशकनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशकूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: काला सारियुनि जी जान, हारीअ जी शान, जदीद फार्मूला सां तयार करे सुंडियुनि ते सघारो वार, बसी ऐं देरपा असर। स्टालिन जो गाला सुंडियुनि जो दुश्मन। गाला जी बदौलत थे सुंडियुनि जो मुकमिल ख़ात्मो। फसल रहे देर ताईं महफ़ूज़ ऐं मिले पैदावार वधीक। लेबल ते ॾिनल हिदायतुनि जे मुताबिक इस्तेमाल करियो। क़रीबी स्टालिन ज़रई मर्कज़ तां हाणे ई हासिल करियो।
3: थम थम थम, किताब लेके निकले हम, अमीन कहाना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली, हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: दिन, दिन, दिन, हाँ।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खिलाफ कार्रवाई जारी वधिक दहशतगर्द मारजी वया सिक्योरिटी जरिए मौजूद बलोचिस्तान के इलाके कुरिजायत में कुछ ही इतलात ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारजी वया टे जख्मी थे मारजी वे एक दहशतगर्द की सुणप मुश्ताक अहमद उर्फ कोयार के नाले से थी है दहशतगर्दन के कब्जे में एम्युनेशन मैगजीन दस्ती बम IED ठाण जो सामान पिण हथ किया वो तालिबान हुकूमत खिते के गैर मुस्तकिम करण लाइ प्रोक्सी बणजी चुकी है। गडियल कौमन में पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो आहे त तालिबान हुकूमत TTP के महफूज बना गाहूं ऐं हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP BLA मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश जा इलाक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब तुर्की चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में सालसी जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि। घरू वजारत के महातहत समूरन सरबराहन जो घरू वजीर मोहसिन नकवी की सदारत हेठ इजलास घरू वजारत के इदारन की कारकर्दगी बेहतर बनाने ए गडियल राबता मजबूत करण ते गौर। मोहसिन नकवी है तो घरू वजारत जो कम बेन वजारतन का मुख्तलिफ ए गैर मामूली है। सभी इदारन के घुर्बल वसीला डींदी गजी एक बे के सपोर्ट कदी सभी इदारन जहा सरबराह डेटा ए साइबर सिक्योरिटी असरायता गडियल कदम यकीनी बनाएं।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाइण लाज़मी आहे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी? मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: आप सुन रहे हैं
2: जी अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाइणु लाज़मी आहे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचा उछालिए तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना फिर रुकूंगी, सामने तमाशा बन गई मामा।
4: अच्छा

0: अच्छा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
2: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

مجھے اکبر پہ سر عطا کر. میری بہن کی حسرت ہے.